जतनर फुंग हम तेलाम शगो 101.6 मेगाहर्ट्ज एफएम ओजेंदो स्टुडियो नि जरा खगो फुंगनि दामदक तामै शोति गाइसा अंजाक अजराव तेनरो खनाय तंगो 4.0 मेगाहर्ट्ज एफएम ओजेंदो न स्टुडियो नि ओ फाइसक पाइजाक आंगनरक निकचारा नरक नि बुखुक सबिदा तंगा नयनरक बाय फुंगनि दामसनि तामै शोति नेचि बाजरा तेतिनिनि शालकामा पांडावजों सालायनाय तंखर्न खाथि नारेखनानि एबा तंखर्नि माल मातारकन जों बर' रक्न मोथाङै नारेखमा हायन ब्रकनब मोथाङै नारेखनानि आबनतै जों तिनि सालायनाय तंखर जों तंखर्न मोथाङै नारेखनानि आककनतै फायदिंगाय जों पुइलान सिनि तिनिनि अपान्दान कैसा लभ मुं कैसल तंगसा लब मूंग रचा मूंग चंगलैन अजराव नरखनाई दंग अजराव और रचा मूंग

0: आउ अनि आफौ तंगो तिप्रा हस्तिनी आमचाई बेरेमनी नजरुल जयंती पालनानी बगै थांगै तंगाबो बसकां ओबीसीनि मेटालनि साल नैजि दक सालमारिव आबो अंनाय जतनबारी कम्युनिटी हल करबुक आमचायो आरो करबुक आमचेनि रेसाब मुं मोसामुं गोरों रग मानजागै बातायबायनाय तै आरो रिक मुं रगनि बातायमुं बाव अंनाय हिनै साख्लाय जाखा फारि दाबो जों सेबगो बरक्लामानि खोनालायन हाइकर्ट अफ त्रिपुरा ओ किसिसा बक्सा आसुखथाय बरक लांनानि बागै कयमंबलाय सानजाखा बक्सा आसुखथाय ओंखा गायबा जुनियर ग्रेड ट्रेन्सलेटर आं रिजार्भ रगनि बागै गायनै एस टि रगनि बागै गायनै तै एच सि रगनि बागै गायसा अ बक्सा आसुखथायनि बागै रोंमारि ओंनानि नांगौ गसिजाक इउनिभार्सिटिनि एम ए इंलिस तै कमार्स बो कम्पिउटार साइन्स बो कयमंब्लाय रिमाननाय कयमंब्लाय रिमाननि बागै रेजिस्ट्रेसन फि नांनाय आं रिजार्भनि बागै 600 एस टि एस सि रनि बागै 300 उमर नानि नांनाय गोबांखौ खोमानि न बि सि 400 कयमंब्लाय रिमाननि पाइथाक सालमारि अबिसिनि जुन तालनि साल जिथाम सालमारि जरा
1: त्रिपुरा हास्ट्रे हाबांनि टिपेट सिनि बखाकतै एसिस्टेन्ट टेक्निकल अफिसारो बरक लां जागै दङ एबा कयमंब्लाय यासाक जागै दङ आरो बुकचा थाय दङ नैरा नैजि रोंमारि नांनाय इन्जिनियारिं बिए बिटेक कम्पिउटार साइन्स आइटि इलेक्ट्रनिक इलेक्ट्रनिक एन्ड टेलिकमिउनिकेसन एबा एम सि ए उमर खाजाक दङ चिचारनि सिमि बा ब्रैजि जरा आबनि बागै नरक अनलाइन टे कयब्लाय रहर मान्नाय बिसकां जून तालनि बा सालमारिनि सारिकनि दामबातामै सती थामजि जरा आबनि बागै नरक फि नांनाय आनरिजार्भ रगनि बागै खक थामरा बाजि तै एस सि एस टि रगनि बागै नैरा बाजि तैबो काहामकै सायमाननि बागै नरक वेबसाइटआव थांगै नायमानाय टिपेटसि डट त्रिपुरा डट गभ इन
0: आवानिया फतंगो बक्स नगर आइ सि डि एस प्रजेक्टआव बेबागै बक्स आसुखथाय गायसिनि अंगनाबादि वार्कार बाय तै अंगनाबादि हेल्पार रत लांनानि बागै कयमंब्लाय सानजाखा अंगनाबादि वार्कारा दङ गायबा तै अंगनाबादि हेल्पारा दङ गायनै अंगनाबादि वार्कारनि बागै रोंमारि ओनायनि नांनाय माध्यमिक पास तै अंगनाबादि हेल्पारनि बागै हिंखाय क्लास 8 पास उमर ओनायनि नांनाय गोबांखौ खोमानि न बिसि 400 बक्स नगर नि ब्रै रक्सिमिनो अ बक्स आसुखथायो कयमंब्लाय रैमाननाय हिनै साख्लायजाखा कयमंब्लाय रोंनानि पाइथाक सालमारि अबिसिनि मेटालनि साल 300 सालमारिनि सारिकनि दामब्रै तामानि जराव कयमंब्लाय रोंनानि बागै निकुमांखा टुडा सि डि पि इउ बक्स नगर आइ सि डि एस प्रजेक्ट सिपाहीजला त्रिपुरा आबनो कारिब स्टेट आयुष मिशन त्रिपुराव बेबागै कायसि ब्रै बक्सा आसुथाय बरक सुबुंनानि कयमंब्लाय सानजाखा बक्सा आसुथायनिका मेडिकेल अफिसार होमिय'पेथिव कायदक आयुर्वेदाव कायदक तै कमिउनिटि हेल्थ अफिसाराव गायनै अ बक्सा आसुथायनि बागै रोंमारि होननानै नांगौ गसिजाक इउनिभार्सिटिनि बि एच एम एस एबाखे बि ए एम एस दरमायनाय तालो 35,000 उमर गोबां कुक नानि बा उमर गोबां कुक न बिसि ब्रैसि नि बिसिङाव ओंनानि नांनाय कयमंब्लाय रोंनानि पाइथाक सालमारि अबिसिनि जुन तालनि सालनै सालमारि नि बिसिङाव
1: टिपेटसिनि बखाखदैखै जुनियर इंजीनियर ग्रेड वन जुनियर इंजीनियर ग्रेड टू बरक लांजागे दंग और बुक्चा थाई दंग यू आर दंग खड़कथाम एस सी दंग खड़कसा एस टी दंग खड़कसा बेगल जत खड़कबा ते जुनियर इंजीनियर ग्रेड टू दंग यू आर खड़कन एस सी एस टी खड़कसा बेगल खड़कथाम आबनी बागे नर कयब्ला रहर

0: परफॉर्मेंस का बोलो
1: द फ्यूचर
0: मार्केट ट्रेंड टेक
2: सुने में आएगी
3: आज की खबर देख
4: पहले ही बोला ब्रो
0: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
0: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
9: এবারে কিন্তু চলে আসছি

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में
3: पहले ही बोला ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: दोस्त ने बोला
5: আকাশবাণী আগরতলা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ইংরেজি সংবাদ এবং তার ঠিক পরেই রয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ইংরেজি সংবাদ।

0: 101.6 মেগাহের্জে FM উজ্জয়ন্ততে রয়েছেন, আর রয়েছেন এই মুহূর্তে সকালবেলার অনুষ্ঠানে। আজ সকালবেলার অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি, আপনাদের বন্ধু নিতাই।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो
1: फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड टेक
1: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख
4: पहले ही बोला था ब्रो
5: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
7: मेरे दोस्त ने बोला
8: देवी जी की सुनो
9: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और

0: सिम बरक थांनाय गनिने चार पाँच जन थांनाय एज लेभेल रन्जित ट्रफि तो कैब करे एज लेभेल मांगनै मांगथाम तीन चार जन आसंनो हेंगे जैसे चीनी सिम बरक सिन चार रक दङ आं साउ जदि क्रिकेट जदि आनो आं जैसे हेल्प खालामनाय जैसे थांनानै बागि हेल्प खालामनाय आबो खालामनो किन्तु नों बिसिंग थांनानै मोसानो नांनाय मेन कखे थांनानै मोसानो नों थांनाय
1: नों थाजिं साखा मोसौमानि तो जथन दंमानो दाबो खेसराय खरकसा बेलाय गोरै नग नखनि बब मोसौ इमानो ओंखाय थाजिं किसिसा ककनो नों साखा जाबं किसां आइडि आंखा जे रां फैसा रग्ला किसा गोबां नु नांना अमहाय क्रिकेट रगत थांना थांखा तामला हाई प्रोफाइल गेम एबा थोंमुं होनैमानो अमो जे बेलायखेनो रां फैसा नांगौ जेफोर पुलियान जिमि सेंफ्रुनो रनो फुटबल रखोंखे तो तामबा फुटबल कायसा पायना खाबोनो नों प्रेक्टिस खायनो नों निनि लांमानो नों फगे मानो फिया वान्स उइनाय खांखे क्रिकेट थांखा टाप नों पुलिया जेफोर डिउस नि सिमि सेंगानो आफ्रो नै निनि पेड पायना नांगोन ग्लाब्स पायना नांगोन बेड अबभियसलि पायना नांगोन खांखे बल बो नों तन नांनाय निनि जे सागो मानै नांबाय माने बेबाक्स पायना नांगौ आ जे सिकन पुलिया सेंफ्रुनि लेभेलनि सिमि आबो गैनो बर' रगा किसा वानसुक थानि फेरै थांना तामि हेन
0: आंबो तो दङ न' इंके क्रिकेट किसा एक्सपेन्सिभ जिनिस ताब नों बेट पायना थां इंके अनेक दाम न' इंके ग्लाभ्सबो मोटा मोटि दाम बेटबो दाम जुताबो दाम इंके ताक नों ताक जुदि नों फाइनेन्सियेलि जुदि स्ट्रं अं इंके किसा प्रब्लेम नङ आंबो तो प्रब्लेम नों जुदि ताक नों क्रिकेट थांनाय इंके थांनाय हिनफानो नों तक थांबाय फानो थांबानो नों जुदि डिटारमेन्ट खायदोगा जे आं थांनाय न' जेखौ फानो आं थांनाय नों जुदि थांनानै स्टार्ट खायगोन लाखबो अनेक समय फेक्टर खायो जे नों थांनानै थांखा थांनायनि अनेक कन्ट्रल लेभेल थांखा आंबो फेक्टर खायो हेंगे जुदि नों थांनानै मुसुखौ फानो थांखा नों अन्य कन्ट्रल लेभेलाव थांलिया हेंगे आंबो किसा हार्ड फिलिं किसा नाय समय किन्तु किसा एक्सपेन्सिभ जिनिस न' क्रिकेटले तामि माने आं जेफोर जायफोर स्टार्ट रखायगा आसमयथ' किसा सिनबागै किसा कयां फैसिं ताहिन सानानै ताव रां रंनि किसा प्रब्लेम अंखा जुद' किसो न' किन्तु बावसन' सिनारेलिया जे रां रंनि प्रब्लेम अंफानो सिनारेलिया आसो इंके सों तो आसो फेस खायलिया रां रंनि तो
1: वल अमाहिनो सोंबो नुगो पारा हामसै रग' जेफोर सों थोंलायो सों दाबसार जों नुगै दङ जे दाबो गासो रां फैसा न' ताम बांजागो डिउस बाय थांना गांखे जे क्राक बल टमना बाय थांना गांखे जे आबो बायनो कुबिखौ क्रिकेट नि थोंमु उंगु नुगो सराय रग' बाखालाय थांफायो टेनिस नाहार पायनै दाबो बेट नाखा दाबो अमाहिबो नुगो जे बाक्सा बाक्सा स्टाम खायनानै गौ बुनि बेरा वाफि फोन सोखागै नारखा दुमै थांलायखा आमाहायखे इजि क्लाय सागे जे नों सामान कक बसैनो जे गोबां कक रां फैसा नांगौ आबोनि बागै क्रिकेट न' बै गोबां कक उसल जाख होनैनाय आबाहायनो ओंखाना खाख' जमाहै नों जे सामान कक रब' नों सागो जे मुसुंगो अनेक गोबां मा सारायरावनो फायदि थोङै मानो होनैनि सबाय मानो होनैनि बाहे बाहेखौ सबाय मान नों जे दाबुक सारायराव थांना मुसुङै दंनायनि क्लास थ्री फर फाइभ सिक्स सेभेन बर'नो
0: सबाय मानो इन देन्स दाबुक जुदि नों जुदि क्रिकेट थांना मुसुखा दा कचिं सेन्टार आमरक खायखा हिंगे जों जुदि सिनि आमरक खायखे जों नखा हिंगे जों गाइड खायमानो जे बु क्लाबो थांनाय बु क्लाबो थांखायखे निनि नों बेसि चान्स मोननाय प्लेयार बुजि नों आमक खालामनाय हिंगे आमथि रंबोता नों जुदि निनि दाउक तो सिनि किसा मोनसे सिनि जाबा नों जुदि बेड रक पायनाय हिंगे जों बेड रकनिबो आबो आइडिया खायरिमानो हिंगे त्रिपुरा तो किसा गोबां नो बेड रकनि दाम याफोर बेड रकनि दाम जुत किसा गोबां हिंगे जों आमरक किसा अन्य जायगा डिलारक थांगा हिंगे डिलार कमो फान दुइ मानो आमतिर जुत जुता रनिबो नों पायना हिंगे कमो फान दुइ मानो त्रिपुरा खेत जुत किसान दाब ताब तो अनलाइन नि जामाना अनलाइन बो अनेक कम हिंगे आमर गासो प्रब्लेम अंना नको गया किन्तु क्लाब रक बा नों एज लेभेल नहते थांना थके अंडर 12 अंडर 14 अंडर 15 थांना थांगा हिंगे नों कोचिं सेन्टार जदि आम खायना हिंगे कोचिं सेन्टार बो खायमोनो आबो जों जेसे आनि पखे जेसे जे हेल्प खायना आबो आं खायरमोन आं तोखन
1: दो हिंगे आं सोंगानो नङा दाबुखौ आङो थांगोन नङा माहिनो कक जे खरकसा सराय क्लास फाइभ एबा सिक्सआव बरै दङ दाब थांना मुसुङै दङ सेंनानै बाहे बाहेखे ब ताम तामखे थाङैनाय ताम ताम खायनाय थोंमुं न' ब सेंनाय एबा आरोबाव माहाय दंबोला ब क्लाबाव थाङैनाय थोङैनाय बाहेखे प्रेक्टिस खायनाय बाहेखे ब चान्स मानाय एबा बबतै आबोनि राइडारक दङ आबोथ' सायमाना मुसुं दो ब क्लास फाइभ सिक्स परै दङ दाबो जे खानाय दंनाय नों बिसिंखौ फोन इमानो जे इ रां फैसा दङ बिनि बुफानि बुफा किसा मिसा साख्रि खायनाय रां फैसा आजिउ हब दाबो बसला न' अमाहायखे क्रिकेट प्लेयार खायना मुसुङो होनखे पुलियानो फाइभ सिक्स परै दं होनखे बताम खायना नांगौ सराय
0: প্রথম তো বিনি এজ এজ বুঝছেন না সিক্স ফোর হেঁকে তো কমসে কম সিক্স এগারো বারো বছর না আইডিয়া বা তেবু হ্যাঁ এগারো বছর বছর বারো বছর না হিঙ্কে সিক্সে যদি পড়ি তখন হেঁকে বক আরামসে আমো খাইমানো কোচিং সেন্টারে থাকা হেঁকে কোচিং সেন্টার অনেক কোচিং সেন্টার দো তাবো তাবুক চিনি এসোসিয়েশন দো ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পোস্ট অফিসও নিউ বড় থাকে সিংখানো নাই যে আং এমটি এমটি ক্রিকেট থাকবো বু কোচিং

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं,
1: नहीं कभी नहीं।

चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए

0: कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए
1: जी जी
0: तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी जी।
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ। और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरु जी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं। किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन और वो, तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता

0: होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
1: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं, जी, जी. तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था.
0: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं. आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
1: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी. इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट.
0: क्या बात. अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए. जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है. इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए.
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं. आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी. तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई. बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ. निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे.
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी. आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई.
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया.
0: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
1: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की. तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता था.
0: बिल्कुल सही कहा
1: लोगों को
0: जी.
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे. हाँ. तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो.
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके?
1: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी. अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है.
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है. कुछ नया क्रिएशन. तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है.
0: जी, जी.
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है. पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की. जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है. तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया.
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में. तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं. हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में.
0: जी बिल्कुल.
1: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पटेल ओमकारनाथ ठाकुर.
0: हाँ जी.

0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए। तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे।
1: जी
0: तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे
1: हाँ
0: बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तो, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग अब। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, हम बच्चों का प्रोग्राम। तो आया छड़ी ले करके वहां, वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। उसके जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का? तो लोग हाँ कर। तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया
1: वाह
0: है? तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता
0: हाँ,
1: है आपको?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी,
1: जी
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें, ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है,
1: जी
0: तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ,
1: क्या
0: उसमें
1: बात
0: मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

रखा एमएलए रणजीत एमएलए रणजीत चाहा एडिशनी चारिफां आदों सीके जमातिया बेरेख्री नायखुंनि तांगफां उत्तम कुमार चाकमाताय दागिफां प्रशांत बदल नेगी सबसे दूर सबसे पहले वांछुक मुंगन जनजातीय गरीमा तेर उनकुति जेलव पलाय जगै टंगो आपनर गय तिनि पेचाटर ब्लक नि नवीन छरा एडीसी विलेज कमिटी नि तांगनक बुसकांग ताय आंदार छरा हाई स्कूल थंग नखलव प्रशासनिक ताय साखाम शिविर कायचा छंग जका आरो साखाम नायखुनि बखाखै बेमारी रनो साखनै मागना बिथि बुरायबो बागजाखा जल जीवन मिशन तांगबतांगनि बिसिं नक ब्रुम ब्रुम नंजाखनाय तै काहा मानथग्रिना नाहारै तिनि उदयपुरनि गुमुटि जेला नायकलफां तांगनग आमजक नायमुंनि ककलाम पान्ना कायसा सनजाखा पान्द तांगबतांगनि सामुं तांजाक टंमानो नंजाखनाय तै काहा मानथग्रि मुं ताय पाइपलाइन बजाकमन तै सुक्रुबै ककलाम सालायजाखा उत्तर त्रिपुरा जेला नायकलफां तांगनग लुकुलेखामुं 2027 तै फोरमुंनि लय खालायमा तिनि चेंजाखा आबनो चेंगिरिखा लुकुलेखामुं हास्ते दागिफां रतन बिसास आरो कबनि बिसिं मानजाखा उत्तर जेलानि यागबारा जेला नायकलफां विजय सिन्हा आकसं थोंलायमानि ककटुमा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएसननि नायकलजाक बुरिरंगनि अरनि क्रिकेट बाथै मुंग तिनि थोंमुं कायब्रै संजाजाखा नरसिंहनि टिआइटि थोंखलाव संजाक थोंमुंग आगरतला कचिं सेन्टार रान नैराचि ब्रैबाय रयेल कचिं सेन्टार न नरसिंहनि पिटिआर थोंखलाव निउ प्लेस सेन्टार रान थामचि चुकुबाय रामनगर स्पोर्टिं क्लाब न एमबिबि स्टेडियामाव युनाइटेड फ्रेन्डस विकेट कायथामबाय उसपुलिं क्लाब न ताय महनपुरनि तालतला थोंखलाव मडार्न क्रिकेट एकाडेमि विकेट कायब्रिबाय चाम्पामुरा कचिं सेन्टार न मेचेनखा नबरथिबानि ककटुमा बोसखां दाम नैथिब्रा हास्थानि जत हांखर फेरांखगै वाते वावनो हिनै नबारथिबा नायखं साख्लायखा खोनासालनि तुंमारि साखाव 35 डिग्री सेल्सियास ताय खामाव 27 डिग्री सेल्सियास गानागिनि तंगोन दिनै सालनि तुंमारि तंखा साखाव 35 डिग्री सेल्सियास ताय खामाव 26.4 डिग्री सेल्सियास पाठक ककटुमा बुबाग्रक तैसा पुरु दिनै दिल्ली कटाल भारत हाखतर बाय साइप्रासनि बिसिंखियासो कक खालायमुंग मुंसरि लेख्या मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी खोना भिडिअ कन्फारेन्स बिसिंतै खरक जिबा सायनि गोबां गोताल सेप मानाय सिखलारन अपारियाफोरनो त्रिपुरा जयेन्ट एन्ट्रान्स आमजों मोनखारि तिनि कारिजाखा ककटुमा तिनि बागै अरन पाइखा उलनि ककटुमा आवायङोन खोना फुं दामसिनि सटि ब्रैजिअ'

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय

0: तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण

0: उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
2: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
2: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में

0: कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमी की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर